श्री राम लला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, श्री काशी विश्वनाथ के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू महारानी के, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के, समस्त पूर्वाचार्यों के, सर्व संत वैष्णव भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, गो माता के, भारत माता के।

श्री अयोध्या राम जी लला की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री रमापति रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय।

करम सतांगतिम भजे सशक्ति सानुजम शचेपते प्रियानुजम तदंग्रि मूलये नरा भजन्ति हे नमत्सर पतन्ति नोम वर्णमे वितर्क वेच संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनुपरूप

वर्जनम् भवबीजानाम् अर्जनम् सुखसम्पदाम् तर्जनय्यमधूतानाम् राम रामेति गर्जनाम् श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमारथी भेष धरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

प्रस्तुत है श्री मद्भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 11 है विश्वरूप दर्शन योग। भक्त की जिज्ञासा पराकाष्ठा पर है, वह प्रभु के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन करना चाहता है। भगवान से दिव्य चक्षु पाकर वह उस अति तेजस्वी दिव्य शस्त्रों व

श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप को प्रणाम करता हुआ अर्जुन कहता है कि हे अच्युत, मैंने अज्ञानतावश आपको मित्र व सखा समझा, आपका उपहास किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे विश्वमूर्ते, मुझ पर प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाओ।

जनार्दन अपना सौम्य रूप दिखलाकर प्रिय भक्त को आश्वस्त करते हैं। वे कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ इस स्वरूप के दर्शन किसी वेद ज्ञान, तप, दान अथवा पूजा से नहीं, अपितु मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही हो सकते हैं। श्री भगवान कहते हैं।

0: वराह पर्वतमाला तेरा उद्गम स्थान, श्रृंगेरी हरिहर हम्पी तेरे तीर स्थान, धार्मिक एकता तेरा नारा, सांस्कृतिक क्षमता मंत्र प्यारा।
1: वरदा वेदवती हंद्रिंग, वेणी भीमराती मलपहरिणी आदि पुण्य धाराओं को लेकर मुक्ति क्षेत्र में कृष्णा से तेरा संगम है कितना हृदयंगम।

0: तुम भद्रा,
1: तुम्हारा नाम लेते ही 14वीं 15वीं तथा 16वीं सदियों में दक्षिण भारत में बसे उस भूतल स्वर्ग विजयनगर साम्राज्य की याद आ जाती है, जिसकी राजविधियों में मोती पन्ने जैसी बहुमूल्य रत्न राशि बेची जाती थी। चांदी सोने से आभूषित वे राज प्रासाद, वेद उपनिषदों के अनुरणन में गुंजित मंदिर, संगीत नाट्य कला की निरंतर उपासना से महिमान्वित वे कला मंडप,
2: और हाँ याद आ जाती है साहित्य समरांगण सार्वभौम श्री कृष्णदेव राय के सक्षम नेतृत्व में निश्चिंत प्रजा के सुख जीवन की, अपने तीरों पर पनपती सांस्कृतिक समृद्धि को गर्व से निहारती तुंगभद्रा की जलधाराओं की।
1: कर्नाटक की जनता तुंगभद्रा की उन अमृतमय धाराओं की नेति नेति प्रशंसा करती रहती है, गंगा स्नानम तुंगापानम कहकर।
2: साधारण जनता ही क्यों, बड़े बड़े विद्वान व पंडित भी तुम्हारी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। विजयनगर साम्राज्य के सुविख्यात तेलुगु कवि तेनाली रामकृष्ण ने कहा,

0: इस कविता का तात्पर्य है, हे गुणभद्रा तुम भद्रा नदी, ये कैसी विडंबना है कि नदी सहज सागर संगमिचा को छोड़कर तुम कृष्ण नदी में जा मिली और अपना अस्तित्व खो बैठी। अगर सागर राजा तुम्हारे संगम सुख का पात्र हुआ होता तो वो कावेरी यमुना जैसी नदी कन्याओं का नाम तक न लेता।
1: तुंगभद्रा के पानी की वैद्यपरक विशेषता कुछ और ही है। इसे बता रहे हैं सुप्रसिद्ध संशोधक डॉक्टर तिरुमल रामचंद्र।
2: రాగిని గంటు అనే వైద్య వస్తుగుణ కోశంలో తుంగభద్రా జలం స్వాదు స్నిగ్ధం ప్రోక్తం తథా గురు
3: ఆయుర్వేద వైద్య గ్రంథ రాజ్ నిఘంటు మే కహా గయా హై కి తుంగభద్రా కే పానీ మే స్థిత ఔషధీయ గుణో కే కారణ ఇస్కే పానీ కే నిరంతర సేవన సే అల్సర్ పిత్త దోష రక్తస్రావ జైసే అనేకో రోగ దూర్ కియే జా సక్తే హై।
0: ఇన్ విశేషతాఓ కా మర్మ క్యా హై తుంగభద్రా, तू बता दे, तुझ पर निशावर ये जनावास कैसे हुआ, तू बता दे।
4: मेरी जलधाराओं की विशेषता का रहस्य चाहिए तुम्हें तो सुनो। हिरण्याक्ष के क्रूर बंधन में जकड़ी अपनी प्रिय सखी भूदेवी की रक्षा करने महाविष्णु वराह अवतार लिए उस दानव संघार के बाद विश्राम करते हुए विष्णु देव के दोनों खगों पर से जो श्वेत निकला वही तुंगभद्रा कहलाया, यानी कि मैं उस अवतार गाथा प्रणय गाथा की साक्षी हूं। मैं
5: अपने उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य के वराह पर्वत की पश्चिमी घाटियों में से कदम बढ़ाती ये सरित कन्या तुंगा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पावन श्रृंगेरी क्षेत्र में श्री शारदम्बा का तथा आगे शिमोगा में शिव जी का दर्शन कर लेती है। फिर तीर्थहल्ली में परशुराम की कुल्हाड़ी से बनी घाटी के तीर्थ को लेकर कुलली की तरफ चलती है अपनी छोटी बहन भद्रा की प्रतीक्षा में।
6: तुंगा की छोटी बहन भद्रा समीप ही के बाबा बडून पर्वतमाला में जन्म लेकर होन्नूर को पार करती बड़ी उत्सुकता से पहुंचती है कुड़ली अपनी बड़ी बहन तुंगा से मिलने।
4: हम दोनों का वो संयुक्त रूप अभीप्सित हितदायिनी तुंगभद्रा कहलाया, हमारी इस अपूर्व एकता के प्रतीक ठहरे मेरे तीरों पर बसे विविध तीर्थ स्थान। सबसे पहला क्षेत्र है हरिहरा।
5: गुहासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा के दर्शन के लिए घोर तपस्या की थी। वर्षों बाद ब्रह्मदेव के दर्शन हुए। उसने वर मांगा, पशु पक्षी दानव मानव आखिर हर या हरि तक से भी उसे प्राण भय न होने का, और पाया भी। बाद में उसकी क्रूरता के शिकार बने देवता लोग जाकर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के पैर पड़े उस राक्षस से उन्हें बचाने के लिए। आखिर हर और हरि के सम्मिलित अवतार हरिहरेश्वर द्वारा उस राक्षस का वध हुआ और तभी से ये क्षेत्र गुहारण क्षेत्र और हरिहरेश्वर भी पुकारा जाने लगा।
6: इतिहास पुराण के अलावा तुंगभद्रा भारत जाति की राजनीतिक गतिविधियों की भी साक्षी रही। भारत के स्वातंत्र प्रदाता व जाति पिता महात्मा गांधी के स्मृति अवशेष 1948 में 15 फरवरी के दिन हरिहरा क्षेत्र के तुंगभद्रा में निमज्जित किए गए।
4: हरिहरा

0: के बाद मेरी यात्रा उस शुभंकर प्रदेश किष्किंधा की तरफ चली, जहां सीता वियोग में दुखित श्री रामचंद्र को सीता का कुशल समाचार मिला। ये वो प्रदेश है जहां समुज्ज्वल वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक महातपस्वी विद्यारण्य के निर्देशन में विजयनगर महासाम्राज्य की स्थापना हुई थी। धार्मिक एकता, सांस्कृतिक क्षमता और ऐतिहासिक मान्यताओं का सुंदर साकार रूप था विजयनगर। कन्याकुमारी से लेकर उड़ीसा तक तथा पूर्व पश्चिम सरहदों तक के सुविशाल भूमंडल में विस्तृत विजयनगर।
1: सुप्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्री कृष्ण स्वामी ने अपने ग्रंथ सोर्सेज में इसका उल्लेख किया कि विजयनगर राजा वैष्णव होते हुए भी अपने राज में अन्य धर्मावलंबी नायक तथा सेनापतियों को रखा करते थे। मुसलमानों के लिए नगर में मस्जिदें थीं।
0: विजयनगर साम्राज्य सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी सुविख्यात था। राजधानी हम्पी संगीत, साहित्य, शिल्प, मूर्ति, स्थापत्य इत्यादि अनेक कलाओं का आगार था। मुझे लग रहा था कि कुबेर की अमरावती मानो स्वयं स्वर्ग से उतर आई है वहां पर।
2: अब कुछ पर्यटकों से मिलते हैं।
3: I'm from Germany. I was told by an Israeli girl.
4: मैं जर्मनी से आया हूँ। इज़राइल से आई हुई एक और महिला पर्यटक ने मुझे हम्पी के दर्शन करने की सलाह दी। मेरे लिए यह एक अच्छा अनुभव है कि यहाँ भारतीय संस्कृति, सभ्यता व जन जीवन को नजदीक से देखने का अवसर मिला।
5: I enjoy Hampi very much because of the beautiful landscape.
2: यहाँ के सुंदर खंडहरों के बीच चलते फिरते देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। विजयनगर साम्राज्य के वैभव के बारे में मालूम होता कितना ही अच्छा लग रहा है। आई लव इट।
0: लेकिन सन 1565 ईस्वी की राक्षस तंगड़ी युद्ध ने इस स्वर्ग को नरक बना दिया। मेरे ही पुत्रों के बीच राज्य लिप्सा की नागिन का विष, निर्जीव नंदन मन, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मिटाने के प्रयत्न। इसका नतीजा क्या हुआ? यहां खड़े हुए शोकाकुल खंडहर, आज मेरी स्थिति नीरवता के बीच मौन यात्रा।
6: तुम्हारी वर्तमान विजय गाथा के बारे में पूछना तो हम भूल ही गए, तनिक बताओ तो सही।
0: जिस तरह मैंने इतिहास में प्रजा कल्याण व संस्कृति के उत्थान के लिए सभी उत्साही राजाओं को सहयोग दिया था, उसी तरह आज भी मैं आवश्यकता अनुकूल चलती आ रही हूँ। इसीलिए विकास संबंधी विविध क्षेत्रों में प्रजा को अपना सहयोग देती आ रही हूँ।
1: स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाने की परियोजना का श्री गणेश किया था। सन 1940 में सर आर्थर होप के हाथों कर्नाटक के होसपेट शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर एक बृहद जलाशय का शिलान्यास हुआ
2: और 1953 तक इस बांध का निर्माण पूरा हुआ। स्वतंत्र भारत के स्वर्णिम सपनों को साकार देखने की सर्वप्रथम स्फूर्ति तुंगभद्रा ने ही दी। इस बांध से संबंधित कुछ रोचक बातें बता रहे हैं श्री सी सुब्बाराव, तुंगभद्रा परियोजना के मुख्य अभियंता।
7: Main dam in masonry.

0: across the river, 5,712 feet in length, of which 2,300 feet in the middle portion.
1: Tungabhadra बांध की लंबाई 5,712 फुट है और उस पर 2,300 फुट का पिलवे है। नदी की बाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में 127 मील तक बहती है और दाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के बल्लारी तथा आंध्र के कर्नूल जिलों में 217 मील की दूरी तक बहती है, वहां के खेतों को सींचती हुई।
2: इस बांध का संपूर्ण आवाह क्षेत्र है 28,179 किलोमीटर और आज की जल ग्रहण क्षमता है
0: in length of which 2300 feet in the middle portion.
1: Tungabhadra बांध की लंबाई 5,712 फुट है और उस पर 2,300 फुट का पिलवे है। नदी की बाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में 127 मील तक बहती है और दाई ओर बनी नहर कर्नाटक राज्य के बल्लारी तथा आंध्र के कर्नूल जिलों में 217 मील की दूरी तक बहती है, वहां के खेतों को सींचती हुई।
2: इस बांध का संपूर्ण आवाह क्षेत्र है 28,179 किलोमीटर और आज की जल ग्रहण क्षमता है 133 टीएमसी फीट।
3: इस बांध द्वारा कर्नाटक के रायचूर तथा बल्लारी जिलों में 30 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचाई की सुविधा पा रही है। इस नदी के तीर प्रांतों की मिट्टी मुख्यतया लाल व काली मिट्टी है, जो धान, गन्ने, मूंगफली, कपास, केले आदि के पैदावार के लिए लाभदायक है।
2: अरे हाँ, उन लहलहाते खेतों की तरफ देखो, लग रहा है कि खुशहाली के मेले लगे हुए हैं वहां। तुंगभद्रा की छत्र छाया में कितने खुश और निश्चिंत हैं वे लोग।
3: और नदी योजना की सफलता के बारे में किसानों के विचार। श्री शंकर गौट, किसान संघाध्यक्ष व पूर्व विधायक।
4: ये तुंगभद्रा डैम कटिदिंत मुंचितवागि जिलेय गडिगळल्लि अनेक जनरिगे तोंदरेयागि सरियाद सकालक्के मळे बारदे इरोदरिंद इंत बेळेगळन्न
5: बांध बनने से पहले किसानों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा। बांध बनने के बाद किसानों को काफी सुविधा हुई और व्यापारिक फसलें जैसे कपास, मूंगफली, सूर्यकांति भी हो रही है।
3: 70 साल के अनुभवी किसान श्री एमवी नायक, एक स्वतंत्रता सेनानी तथा हरिहर नगर पालिका के पूर्वाध्यक्ष।
6: तुंगभद्रा नदी तटाक सुमार 4-5 सक्रिय कंपनी।
7: कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा के किनारों पर भद्रावती, शिवमोग्गा, हरिहर, दावणगेरे जैसे जगहों पर चीनी के कारखाने हैं और कई लोग इससे रोजी रोटी कमा रहे हैं।
2: इस पानी का उपयोग सिंचाई के अलावा बिजली उत्पादन में तथा मछली पालन में भी किया जा रहा है।
3: श्री सुब्बाराव, तुंगभद्रा परियोजना के अभियंता।
0: एंड फॉर जनरेशन ऑफ a hydro power for the installed capacity of 99 megawatts. The project was taken up in 1945 and completed in 1953.
1: जल विद्युत के उत्पादन के लिए 1945 में तुंगभद्रा बांध परियोजना का संकल्प हुआ और 1953 तक यह पूरा हुआ। अब यहाँ बांध के दोनों तरफ 4 यूनिट तथा 9 मेगावाट के दो बिजली घर हैं और हम्पी के पास इसी क्षमता का एक और बिजली घर है।
2: इन बिजली घरों द्वारा उत्पादित बिजली से आंध्र तथा कर्नाटक की प्रजा लाभ उठाती है।
3: तुंगभद्रा जलाशय का विस्तार 378 वर्ग किलोमीटर है, जो मछली पालन के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस केंद्र से प्रतिवर्ष 2000 टन से भी अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। आंध्र, केरल व कलकत्ते की प्रजा भी इन लाजवाब जल पुष्पों का स्वाद लेती है। सुनिए ये मछुआरे क्या कह रहे हैं। श्री कारे सत्तैया।
8: वो कटला मिर्गाल कावन कार्पो इट 64 चापल पट्टी ऊर्जा गंप पट
9: रव्व कटला मृगालू जैसे तरह तरह की मछलियां यहां पर मिलती।

0: 64 में मछली पकड़कर टोकरे में रखकर गांव को जाकर बेचा करते थे। हमको 4 रुपया 6 रुपया 10 रुपया मिलता था, अब 20 रुपया 30 रुपया मिलता है। अब हम बच्चों को स्कूल को पढ़ाई के लिए भी भेजता है और मकान भी बना लिया है।
1: तुंगभद्रा बांध के यंत्र समूह की तैयारी में सुविधा के लिए सन 1948 में तुंगभद्रा प्रोजेक्ट वर्कशॉप तथा मशीनरी वर्कशॉप का आरंभ हुआ था। इसमें पहली बार वेल्डिंग तकनीक का उपयोग किया गया और बांध के फाटकों का निर्माण हुआ। बांध की समाप्ति के बाद सन 1967 में ये एक सार्वजनिक उपक्रम बना और धीरे धीरे इसका कार्यक्षेत्र बढ़ने लगा। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए ये संस्था अपनी सेवा प्रदान करती है।
2: इस वर्कशॉप के कार्यकलापों का विवरण दे रहे हैं तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक श्री एसपी त्रिपाठी।
3: कंपनी की स्थापना के समय इसके कर्मचारियों की संख्या थी 405 और अब आज 1993 में इनकी संख्या 1045 है। इस तरह कंपनी ने कई लोगों को रोजगार देने में साथ दिया। जब कंपनी 1960 में आरंभ हुई थी उस वक्त इसका उत्पादन मूल्य था 38 लाख रुपया और पिछले साल उत्पादन हुआ 33 करोड़ 7 लाख रुपये का, अर्थात स्थापना समय से आज तक की उत्पादन में करीबन 100 गुना वृद्धि। और इसका शुभारंभ हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों से ही हुआ।
2: हॉस्पेट से आगे बढ़ती हुई मैं बल्लारी व रायचूर जिलों में से आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती हूँ। वैसे तो पुराने व आधुनिक अभियंताओं ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बसवन्ना, रामसागर, कोरिगल, शिवपुर और गंगावती आदि बहुत सारी नहरें बनाकर मेरे पानी को उस भूखंड पे बहाया जहाँ मैं नहीं पहुँच सकती थी। इस तरह मेरे पानी की सार्थकता और बढ़ी। वैसे आगे चलते चलते मैंने कर्नूल जिले में प्रवेश किया। इस नगर के एक छोर पर तुंगभद्रा नदी है तो दूसरे छोर पर तुंगभद्रा मशीनरी एंड टूल्स लिमिटेड संस्था, दोनों जीवनदायिनी हैं। इसने भारत के गौरव में 4 चांद लगाए हैं। इस संस्था के बारे में बता रहे हैं मैनेजर श्री के रामकृष्णय्या।
4: 1991 ఆర్డర్ 1993 కల్ సప్లై సంత కంప్లీట్ చేశాము। దీనికి గాను మాకు 1990-91 సంవత్సరం
5: విదేశం మే కదం రఖనే కా గౌరవ్ హమే మిలా 1991 మే కాగజ్ ఉద్యోగ్ కే లియే आवश्यक सामग्री की पूर्ति हम करते हैं।
4: पेपर मशीन
5: इसके लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल से हमें विशिष्ट निर्यात अवार्ड भी मिला है। इसी तरह अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका से कागज मशीन निर्यात के लिए ऑर्डर मिले हैं। हमारे हाथ में अब 36 अरब डॉलर के ऑर्डर्स हैं।
1: कर्नूल नगर में 500 साल पुरानी सैयद शाह मियां साहब कादरी की दरगाह,

0: जाति पाति धर्म से परे मानवता के संदेश का जीता जागता सबूत। हजरत बाबा की प्रतिभामयी जीवनी व संदेशों को वहां के मौलवी सैयद शाह अनवर बाबा कादी जी द्वारा।
1: बाबा वचने थे बगदाद शरीफ नु थे बगदाद बगदाद बरनाला बरनाला वो मुखाम थे
2: एकड़ांडी
1: बरनाला पंजाब बोला।
0: 500 साल पहले हजरत बाबा जी बगदाद से यहाँ पर आए थे, फिर बरनाला पंजाब जाकर घोर तपस्या की उन्होंने, वहां से फिर बगदाद होकर कर्नूल में आ बसे। अपने पास आए हुए लोगों को मानवता परोपकार जैसी उपदेश दिया करते थे वे।

0: चालीस पचास साल के बाद वे समाधि में चले गए। अब भी दरगाह पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं अपनी मन्नतें लेकर।
1: श्री मुस्तफा ने हमें बताया।
2: నా పేరు ముస్తఫా అండి, నేను తాడపత్రి నుండి వచ్చానండి. నేను నెలగా ఊతురు వస్తూ ఉంటానండి. ఇక్కడ స్వామి మహత్యం ఎక్కువ అండి. ఇక్కడ ఎవరన్నా రాని ఒక దినం నిద్ర చేసే.
3: మేరా నామ్ ముస్తఫా హై. మనసులో అనుకుంటే మై తాళ్ళా పురుదు తూర్ సే ఆయా హూ. అందుగాని ఇక్కడ మై హర్ మహీనే మే బాబా కే దర్శన్ కే లియే ఆతా హీ రహతా హూ. ఫిర్ భీ బార్ బార్ ఆనే కో. मैं बाबा के दर्शन के लिए आता ही रहता हूँ, फिर भी बार बार आने को मन करता है।
0: और ये हैं श्रीमती रत्नम्मा।
4: रत्नम्मा गुड़ूर नंटी मको कोनी कष्टाल पाले वचन।
5: मेरा नाम रत्नम्मा है, गुड़ूर से आई हूँ। मेरे शौहर को नौकरी से निकाल दिया गया था, हम बाबा के पैर पड़े, अब तो फिर उन्हें नौकरी मिल ही गई है।
6: तुम भद्री कितना सुंदर और महत्वपूर्ण है ये धार्मिक स्थल, दो जीवन धाराओं का यह पूर्व संगम।
7: हाँ तूने ठीक कहा, मेरा नारा है मानवीय एकता। मेरे तीरों पर द्वितीय काशी यानी कि दक्षिण काशी अलमपुरम भी है, जो विष्णु के अवतार परशुराम की माँ रेणुका देवी के मंदिर के लिए सुविख्यात है। यहाँ पर इतिहास से संबंधित बहुत सारे शिलालेख मेरी सफलता के प्रतीक तुम्हें मिलेंगे। अपनी सफलता का गर्व है मुझे, मेरी तपस्या है निस्वार्थ सेवा। हाँ तपस्या। आप दोनों ने कभी योगी राघवेंद्र स्वामी के बारे में सुना है?
8: हाँ हाँ, ये तो वही महापुरुष है ना जो महाभक्त प्रह्लाद के अवतार माने जाते हैं। प्रह्लाद की तपोभूमि उनकी यज्ञ भूमि थी।
7: हाँ वही भूमि जो मंत्रालयम कहलाती है।

0: कर्नूल जिला आदविनी तालुक से 52 किलोमीटर की दूरी पर तुंगभद्रा के किनारों पर बसा मंत्रालयम पुण्य क्षेत्र। यहाँ पर सभी धर्मावलंबी स्वामी जी की समाधि वृंदावन के दर्शन के लिए आते रहते हैं। कहा जाता है कि महाभक्त शिरोमणि राघवेंद्र स्वामी समाधि ही में से अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और पूरा करते हैं भी। स्वामी जी की समाधि की एक और विशेषता यह है कि यह भूमि उस समय के आदवेनी नवाब सिद्दीक मसूद खान की भेंट थी।
1: मेरी यात्रा मुक्ति की तरफ। संगमेश्वर नामक क्षेत्र पर कृष्णा नदी में मेरा सम्मेलन। मुक्ति की ओर चलते चलते आखिरी बार फिर एक बांध सुंकेसला में बंध कर करीब 3 लाख एकड़ के लिए सिंचाई की सुविधा देती हूँ।
2: अरे वाह, एक कपूर जैसे, सुगंध के वृक्ष जैसे बारंबार लोक कल्याण के लिए तुम्हारा यह आत्मसमर्पण।
1: हम नदियों का जीवन ही मानव सेवा के लिए है। ग्राम, नगर और राज्य की सीमाओं को पार कर भारतीय एकात्मता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की व्याप्ति करना हमारा जीवन लक्ष्य है। कल, आज और कल भी

आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: सर्वेश्वर शिव की महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि महादेव शंकर की इच्छा से परमपिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और रुद्रदेव को सृष्टि की उत्पत्ति, जीवों का पालन और प्राणियों की मुक्ति के तीनों काम देकर भगवान अंतर्धान हो गए। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे। ये प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता के 15वें अध्याय से आरंभ होता है। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: हे शौनक, परमपिता ब्रह्मा की संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने में उन्हीं की इच्छा और संकल्प से तीनों लोकों में चर और अचर तत्वों की रचना हुई।
2: हे महामुनि सूत जी, आप कृपा कर मुझे बताएं कि परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की।
1: शौनक जी, यही प्रश्न परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने ब्रह्मा से किया था। मैं तुम्हें वही प्रसंग संक्षिप्त में सुनाता हूं। एक दिन ब्रह्मलोक में महर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पहुंचे और अपने पिता ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
3: नारायण नारायण नारायण। हे परम पिता ब्रह्मा, मैं आपका पुत्र नारद आपको प्रणाम करता हूँ।
4: देवर्षि नारद, कहाँ कहाँ विचरण करके आ रहे हैं? लगता है आपके मन में कोई बड़ी जिज्ञासा है जिसके कारण आपका चित्त प्रश्नों से भरा हुआ है।
3: हे परम पिता, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि आपने सृष्टि का आरंभ कैसे किया। ये कथा संसार के अनेक प्राणियों को ज्ञात नहीं है।
4: आपकी जिज्ञासा संसार के प्राणियों का कल्याण करने वाली है, अतः मैं आपको उसके संबंध में संक्षिप्त में बताता हूं। भगवान महादेव ने जब मुझे और भगवान विष्णु तथा रुद्र को सृष्टि के तीनों कामों अर्थात उत्पत्ति, संचालन और विनाश का दायित्व सौंपा तो वे मुझे आदेश देकर अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु भी अपने वैकुंठ लोक जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, हे विष्णु भगवान, महादेव ने मुझे एक कठिन काम सौंपा है, ये आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। देव, मैं नहीं जानता कि सृष्टि के आरंभ के लिए मैं कौन सा यत्न करूं।
5: हे ब्रह्मा, आप ब्रह्मांड के सभी 24 तत्वों का साथ ग्रहण कीजिए जिससे सृष्टि के संचालन में विविधता और तरह तरह की क्रियाओं का समावेश हो सके। इसमें केवल सतोगुण ही नहीं बल्कि तमोगुण और रजोगुण भी होने चाहिए, तभी सृष्टि के सभी जीवों के कामकाज पर भांति भांति की भावनाओं का संचार हो सकेगा।
4: हे विष्णु, ये आपने बहुत सुंदर बात कही है, मैं ऐसा ही करता हूं।
5: हे ब्रह्मा, अब मैं वैकुंठ जाता हूं, आवश्यकता होने पर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा।

अपने आप से पूरे ब्रह्मांड में केवल जल ही जल है। इसी जल से मुझे सृष्टि की रचना करनी है। हे शिव, इस जल के द्वारा मैं आपका स्मरण करता हूं, सृष्टि रचने का संकल्प लेता हूं। यह विशाल जल से भरी अंजलि मैं आपको समर्पित।

0: मैं अभी अभी जन्मे भगवान शिव की शरण लेता हूं। सत्य जाग को मेरा प्रणाम है। इसी जगत में आप मेरा पराभव न करें। आप सृष्टि के उद्भवकर्ता को मेरा प्रणाम। भगवान शंकर की कृपा से मेरी अंजुरी के जल से यह विशाल अंडा पैदा हुआ है। यही इस सृष्टि का मूल कारक होगा। परंतु ये क्या? ये तो केवल जड़ है। चेतना के अभाव में सृष्टि कैसे होगी? इस अंड में चेतना लाने के लिए मैं क्या करूं? हे भगवान विष्णु, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। हे ब्रह्मा, मुझे आदेश दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हे महाभाग, आपकी सम्मति के अनुसार मैंने 24 तत्वों से बना ये अंड पैदा किया है, परंतु इसमें किसी प्रकार की चेतना के चिन्ह दिखाई नहीं देते। आपको भगवान शिव ने सृष्टि के संचालन और पालन का दायित्व सौंपा है, इसलिए प्रभो आप स्वयं इस अंड में प्रवेश कीजिए।
1: जैसी आपकी इच्छा देव, मैं भूमि को सब ओर से घेर कर इस विशाल अंड में स्वयं प्रवेश करता हूं।
0: इस अंड में चेतना के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अब सृष्टि के अलग अलग तरह के कार्यों के लिए तमोगुण आवश्यक है। हे शिव, पाप पूर्ण तमोगुण, सृष्टि के प्रादुर्भाव के लिए अविद्या पंचम जागृति। सृष्टि की रचना का पहला चरण पूर्ण हुआ, परंतु ये तो केवल तमोगुण ही है, पापमय। इनसे सृष्टि का संचालन कैसे होगा? ये रहा तो तिर्या रहा है, यानी पशु पक्षी जो तिरछे चलते हैं, इससे प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? हे शिव, तमो गुण के अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए जिससे सृष्टि के प्राणियों का उद्धार हो। हां, सतो गुण।

0: 佐藤ゴラ、佐藤ゴラ。はあ、やひはえさつべくさるがかおだい、けてうさるけ。परंतु पुरुषार्थ साधन के लिए तो ये भी पर्याप्त नहीं है। तमो गुण और सतो गुण के अतिरिक्त कुछ और होना चाहिए। हे शिव शंभो, रजोगुण, रजोगुण, रजोगुण। यही रजोगुण संसार के प्राणियों के लिए पुरुषार्थ का साधन बनेंगे। एक ओर तमोगुण, दूसरी ओर सतोगुण और मध्य में रजोगुण। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य होंगे जो पुरुषार्थ साधन के सबसे बड़े अधिकारी होंगे। हे शिव, आपकी आज्ञा से मैंने चर अचर, स्थावर जंगम और कर्म के अधिकारी मनुष्यों की रचना का संकल्प पूर्ण किया। किंतु अभी तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ। संसार के प्राणी का जन्म और मृत्यु कैसे होगी? मैं अपने चारों मानस पुत्रों सनक आदि ऋषियों को बुलाता हूं।
1: हे परमपिता, आपका क्या आदेश है?
0: हे पुत्रो, भगवान शिव की आज्ञा से मैंने सृष्टि में चर अचर, जड़ चेतन, स्थावर जंगम तथ्यों का उदय कर दिया है। लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए जीवों की उत्पत्ति की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरी सहायता करो।
1: हे परमपिता, हम तो वैरागी हैं, हम संतान उत्पन्न करने का कार्य कैसे कर सकते हैं?
0: परंतु पुत्र, सृष्टि की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है।
1: हे पिता, हम अपना उत्तम व्रत नहीं छोड़ सकते।
0: मैं कहता हूं ये मेरा आदेश है, तुम चारों मेरी आज्ञा का पालन करो।
1: क्षमा देव, ये असंभव है, असंभव।
0: मेरे ही मानस पुत्र होकर मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, ये मैं नहीं सह सकता। तुम्हें मेरे क्रोध का ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हारा भयंकर अनिष्ट कर सकता हूं। हे भगवान विष्णु, मेरी सहायता कीजिए। मेरे मानस पुत्र मेरा आदेश पालन करने से मना कर रहे हैं, ये मेरे संकल्प की पूर्ति में बाधक हो रहे हैं।
2: हे ब्रह्मा, क्रोध को छोड़ दीजिए, ये चारों आपके मानस पुत्र हैं, इन्होंने आप ही के आदेश से वैराग्य धारण किया है। मनुष्यों की उत्पत्ति के लिए ये उपयुक्त नहीं है।
0: तो फिर मैं क्या करूं प्रभु? सृष्टि की रचना का मेरा काम अधूरा रह जाएगा।
2: हे ब्रह्मा, आप सर्वेश्वर शिव की शरण में जाएं, वे ही आपको इस कठिन समय में राह सुझाएंगे।

हे शिव शंभु, आप ही रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं। सतो गुण से संपन्न होकर सातों भवनों का धारण पोषण करते हैं। तमो गुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं और त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने सिद्ध स्वरूप में स्थिर रहते हैं। सत्यचित आनंद स्वरूप पूर्ण आपको हम प्रणाम करते हैं। आप ही सृष्टि के काल में मुझ ब्रह्म, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का नाम धारण करते हैं। आप सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। आपको प्रणाम।

0: सृष्टि के आदि कर्ता ब्रह्मा, मैं सदाशिव हूं, आपका कौन सा काम पूरा कर सकता हूं?
1: हे महादेव, आपका ये रूप मुझे चकित कर रहा है। आपका आधा शरीर पुरुष का और आधा नारी का है, ये क्या रहस्य प्रभु?
0: हे ब्रह्मा, आपके संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अर्ध नारीश्वर रूप में प्रकट हुआ हूं। संसार की उत्पत्ति के लिए नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है।
1: देव, कृपा पूर्वक आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों।
0: ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करता, क्योंकि वे अपने पाप और पुण्य कर्मों के अधीन होकर सुख और दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार ही करूंगा।
1: हे महेश्वर, तो क्या जीवों की सृष्टि का काम भी मुझे ही करना होगा?
0: प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि आप ही करेंगे। मेरी आज्ञा से ये काम करने के कारण माया आपको बांध नहीं सकेगी।
2: नारायण नारायण। हे परम पिता ब्रह्मा, सृष्टि के आरंभ की कथा तो अत्यंत मनोहारी है, इसके बाद आपने क्या किया?
1: हे पुत्र, इसके बाद मैंने सृष्टि के पांच तत्वों को मिलाकर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। इन्हीं के मेल जोल से पर्वतों, समुद्रों और पेड़ पौधों को उत्पन्न किया। कला से लेकर काल तक के अलग अलग भागों की रचना की।
2: हे परम पिता, इसके बाद आपने संसार में पुरुषों की सृष्टि कैसे की?
1: नारद, सबसे पहले मैंने अपने दोनों नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, वशिष्ठ को अपान से, केतु को कानों से, अत्रि को प्राणों से, तक्ष को गोद से, तुम्भ को छाया से, कर्दम मुनि को संकल्प से तथा धर्म से तुमको उत्पन्न किया।
2: हे परम पिता, क्या इन्हीं से देवताओं और असुरों की सृष्टि हुई?
1: हाँ नारद, भगवान शंकर की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को दो भागों में बांटकर आधे शरीर से पुरुष

और आधे शरीर से स्त्री हो गया। उस पुरुष का नाम मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री का नाम सतरूपा से। मनु ने सतरूपा के गर्भ से प्रियावर्त और उत्तानपान नामक दो पुत्र पैदा किए और तीन कन्याएं, जिनके नाम आहुति, देव आहुति, प्रसूति थे। आहुति का विवाह

0: कामपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र था गुणनिधि। गुणनिधि बहुत ही दुराचारी तथा भोगी था। पिता के लाख समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पिता यज्ञदत्त ने गुणनिधि को निष्कासित कर दिया। गुणनिधि एक अन्य नगर में चला गया। वहां के शिव मंदिर में बहुत चढ़ावा आता था। गुणनिधि के मन में लालच आ गया और उसने चढ़ावा चुरा लिया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसे लेने जब यमदूत आए तो
1: गुणनिधि, तूने जीवन भर दुराचार किया है। यम की आज्ञा से हम तुझे यमलोक ले जाते हैं। तुझे नरक की घोर यात्राएं सहनी पड़ेंगी।
2: हे यमदूत, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नरक की यातना से बचा लो। यमदूत
3: ठहरो। महाराज, यम के दूतों, तुम इसे यमलोक नहीं ले जा सकते।
1: नहीं ले जा सकते, किंतु क्यों? इसने तो जीवन भर अनेक कुकर्म किए हैं। महाराज, यम की आज्ञा है कि
3: किंतु महादेव, शिव की आज्ञा है कि गुणनिधि की आत्मा को शिवलोक ले जाया जाए।
1: किंतु इसने तो कोई पुण्य का काम नहीं किया।
3: किया है, इसने अंधकार ग्रस्त शिव मंदिर में दीप जलाया है।
2: दीप? किंतु वो तो मेरा वस्त्र था।
3: हाँ, वही भगवान शिव के लिए वही दीपदान था।
2: हाँ?
3: सर्वेश्वर शिव की कृपा से तुम शिवलोक के अधिकारी हो गए। हाँ? आओ गुणनिधि, शिवलोक चले।
2: हाँ?
3: आओ।
2: जय भोले, जय भोलेनाथ।
3: आओ आओ गुणनिधि, महादेव शंकर विराजमान हैं।
2: हे करुणा निदान, मैं आपको बार बार बारंबार प्रणाम करता हूं। मैंने जीवन भर अनेक पाप किए। मुझे सचमुच पश्चाताप है। मुझे क्षमा करें दे।
4: गुणनिधि
2: प्रभु,
4: तुमने मेरे मंदिर में ज्योति जलाई है, इसलिए तुम अगले जन्म में कलिंग देश के राजा के पुत्र के रूप में जन्म लोगे।
2: प्रभु,
4: तुम्हारा नाम राजा दम होगा और तुम्हें सत्कर्मों के लिए एक और अवसर मिलेगा।
2: हे प्रभु, हे महादेव, आपकी जय हो। आप सचमुच भोले भंडारी हैं। प्रभु, मैं धन्य हुआ।
5: ये कैसा तेज है, जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ धरती पर उतर आए हों।
4: हे अलकापति, मैं साक्षात शिव हूं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूं। बोलो, तुम्हारा मनोरथ क्या है?
5: हे महादेव, आपकी जय हो। आपके तेज से मेरी आंखें चुधिया गई हैं। मैं कुछ भी देख पाने में असमर्थ हूं। प्रभु, कृपया मेरी दृष्टि को ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं।
4: तथास्तु।
5: सर्वेश्वर शंकर की जय हो। आपका अलौकिक रूप देखकर मैं धन्य हुआ प्रभु। लेकिन महादेव के साथ ये कौन है? अद्भुत सुंदरी, भगवान शिव के इतने निकट, इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरी तपस्या से भी बढ़कर है?
6: महादेव, ये तपस्वी लगातार मेरी ओर देखकर क्या बड़बड़ा रहा है? इसकी दृष्टि मुझे असहनीय है। मैं इसके एक नेत्र की ज्योति

0: बेटी हूँ।
1: उमा, ये क्या किया? ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें पाप दृष्टि से नहीं देख रहा था। बस प्रभु, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं। तुम्हें वर देता हूं कि तुम संसार की सारी संपत्तियों के स्वामी और सबके लिए धन के दाता बनो। आओ पुत्र, अपनी माता के चरणों में प्रणाम करो।
2: महादेवी उमा, मुझ पर कृपा कीजिए।
0: पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी बाई आंख तो ज्योतिहीन हो गई है, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम कुबेर के नाम से जाने जाओगे। भगवान शिव में तुम्हारी भक्ति बनी रहे।
2: हे उमापति शंकर, मेरी तपस्या सफल हुई।

0: स्वामी, आपकी लीला का रहस्य कोई नहीं जानता। आपने कुबेर को वर देकर उसे संसार की सारी निधियों का स्वामी बनाकर अद्भुत कर्म किया है।
1: देवी, मेरी इच्छा है कि कुबेर के साथ हम कैलाश पर्वत पर ही निवास करें। यह कैलाश पर्वत तीनों लोकों के सुख से भी अधिक सुखदायी और मनोहारी होगा।
0: जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
2: सूत जी, महादेव की कैलाश पर जाने की कथा सुनकर मन आनंद से भर गया। अब आप कृपा कर आगे की कथा कहें।
3: हे शौनक, अब कामदेव और रति के विवाह का प्रसंग और दक्ष की तपस्या का वर्णन अगली बार बताएंगे।
4: श्रोताओं, अभी आप रुद्र संहिता के प्रथम अंक की कथा सुन रहे थे। अगले प्रकरण में भगवान शिव की इच्छा से सृष्टि के लिए एक पुरुष और एक नारी के प्रकट होने की कथा का वर्णन करेंगे।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीख भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

6 मिटैया नेट्स 73 किलो हर्ट्स डीआरएम हर्ट्स 54 किलो हर्ट्स एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा एक जलंधर केंद्र है। साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबक शाम दे 4:30 बज रहे ने। हुण असीं तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे आं जित्थों तुसीं शबद कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

0: بن حلاپت ہے نہیں ہو ہر تاپت ہے نہیں ہو
1: نانک جان ہر

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: पिछली कड़ी में आप सुन चुके हैं कि किस तरह श्री राम के परम भक्त हनुमान लंका के अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं। आप लंका दहन का पूरा प्रसंग भी सुन चुके हैं। इस बीच राम और उनकी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंचती है और राक्षस राज रावण की असुर सेना के विरुद्ध युद्ध के लिए मोर्चा संभालती है। अब सुनिए आगे। इस कड़ी के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार।

0: अंगद द्वारा रावण के सब समाचार पाकर श्री राम ने अपने सभी मंत्रियों को पास बुलाया और लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और इसके लिए उपयुक्त सेनापति भी नियुक्त किए गए। श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। दूसरी ओर लंका में भी बड़ा कोलाहल मच गया। अहंकारी रावण ने सारा समाचार सुनकर कहा,
1: इन बंदरों की ढिटाई तो देखो, मरने चले आए। राक्षसों की सेना को बुलाओ। ये बंदर काल से प्रेरित होकर ही यहां चले आए हैं। मेरे राक्षस वीर भी न जाने कब से भूखे हैं। लगता है गृह बैठे आहार विधि दीना। सुबह तक सकल चारों दिशे जाऊ, धर धर भालू की सब खाऊ।
2: श्री रामचंद्र महाराज की
3: जय।
2: श्री रामचंद्र महाराज की
3: जय।
0: भयानक संग्राम होने लगा। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालु गढ़ पर डा रही, झपट ही चरण गही पटक मही, भज चलत बहुरी पचा रही। वानरों के आतंक से राक्षसों के समूह उसी भांति भाग चले जैसे प्रबल वायु के चलने से बादलों के समूह बिखर जाते हैं। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। जब रावण ने अपनी सेना को विचलित होते हुए सुना तो भागते हुए योद्धाओं को लौटाते हुए उसने क्रोध से कहा।

0: सुनो वीरा सुनो, जौरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतर कराल कृपाना, सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा।
1: सचमुच हमें समर भूमि से नहीं भागना चाहिए, रण में लड़ने में ही वीर की शोभा है।
2: शत्रु को ललकारे और वानर भालुओं से भिड़े।
1: कहाँ है अंगद और हनुमान?
2: नल नील और दुर्विंद कहाँ है?
3: श्री रघुवीर की
4: जय।
3: श्री रघुवीर की
4: जय।
1: वो देखो, हनुमान लंका के गढ़ पर कूद कर पहुँचे, एक पर्वत लेकर मेघनाथ पर दौड़े।
2: अरे पंजम रथ सारथी निभाता, ताही हृदय महू मानस हिलाता।
1: उधर देखो, उधर देखो, उधर गढ़ पर हनुमान को अकेले जानकर अंगद भी उछल कर गढ़ पर चढ़ गए।
5: दोनों ही हमारी सेना के विरुद्ध क्रोध से लड़ने लगे हैं।
6: हमारी वानर सेना कितनी विकट है, अंगद और हनुमान दोनों ही दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं। दोनों लंका को ध्वंस करते हुए ऐसे शोभित हैं जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हैं।
7: इस भयानक संग्राम की कोई तुलना नहीं थी। द्वौदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मा नहीं हारी। राक्षसों के दो सेनापतियों अकंप और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलित देखकर माया की। भय निमिख मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल धारा। घने अंधकार को देखकर बानरों की सेना में खलबली मच गई। वे जहां तहां पुकारने लगे, हे राम बचाओ, हे रघुवीर रक्षा करो। तब कृपालु श्री राम ने हंसकर धनुष चढ़ाकर शीघ्र ही अग्निबाण चलाया। उससे तुरंत प्रकाश हो गया। प्रकाश होते ही भालु बलिमुख पाई प्रकाशा, धाये हरख विगत श्रमत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहीं भाली बलिमुख, रिपु दल बल बिचलाई। इधर तो श्री राम जी की सेना राक्षसों का विनाश कर रही थी, और वहां दसानन सचिव हंकारे, सब सन कहे सी सुभट जे मारे।
8: मंत्रियों, बंदरों ने आधी सेना का संहार कर डाला। अब कहो क्या उपाय करना चाहिए? माल्यवंत
9: जी,
8: आप वयोवृद्ध और हमारे श्रेष्ठ मंत्री हैं, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
9: सुनहु तात कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होई न जाही बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख कहु न सुख पायो।
8: क्या कहा?
9: तुम नहीं जानते लंकेश, स्वयं कृपालु भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जो स्वयं काल रूप हैं, जो दुष्ट रूपी वनों को जलाने में अग्नि की भांति हैं, जो गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, शिव और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे कैसे विरोध किया जा सकता है?
8: मालिवंत,
9: इसीलिए अपनी शत्रुता छोड़कर उन्हें जानकी जी सौंप दो और कृपा निधि परम स्नेही श्री राम का भजन करो।
8: अरे भागे, तू अपना मुंह काला करके यहां से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं स्वयं तुझे मार डालता। जा, अब मेरी आंखों को अपना काला मुंह न दिखला।
9: लगता है तू श्री राम के हाथों अवश्य ही मरना चाहता है। चला जाता हूं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
10: पिताजी, प्रातःकाल मेरा चमत्कार देखिएगा, अधिक क्या कहूं, बहुत कुछ करूंगा।
8: तो ठीक कह रहा है मेघनाथ, मेरे मन में भरोसा है कि तू जो कह रहा है उसे करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
11: घोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, जो समस्त लोकों में धनुर्धर प्रसिद्ध हैं? नल नील दिवित सुग्रीव और अत्यंत बलि अंगद और हनुमान कहाँ हैं? अपने भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं हठपूर्वक उसे और सबको मारूंगा।
7: मेघनाद ने बड़ा विकराल युद्ध किया। उसके द्वारा अपनी सेना को विकल देखकर पवनपुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े जैसे स्वयं काल दौड़ता है। उन्होंने एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ लिया और मेघनाद पर डाल दिया, पर पहाड़ गिरते देखकर मेघनाद आकाश में चला गया। उसके रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काति निवारे। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना।

0: लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। लक्ष्मण जी के प्रहारों से मेघनाथ प्राण मात्र शेष रह गया। प्राण संकट में देख उसने वीर घातिनी छांडे सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। शक्ति के लगने से श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। हनुमान उन्हें श्री राम के निकट ले आए। छोटे भाई को मूर्छित देखकर प्रभु राम बहुत दुखी हुए। जाम भगवान के परामर्श से हनुमान लंका गए और वैद्य सुषेण को ले आए। वैद्य ने श्री राम के चरणों में माथा नवाकर हनुमान को पर्वत से औषधि लाने के लिए भेजा। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। मार्ग में रावण द्वारा प्रेरित काल नेम का वध करते हुए हनुमान पर्वत पर पहुंचे। वहां औषध को न पहचानने के कारण पर्वत को ही उखाड़कर आकाश मार्ग से चले। जब अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे तब देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारे उ चाप श्रवण लगितानी।
1: श्री राम, श्री राम,
2: जिस भाग्य ने मुझे श्री राम जी से विमुख कर दिया है उसी ने यह भयानक दुख दिया है। यदि मनसा वाचा कर्मणा प्रभु राम के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो ये वानर पीड़ा से मुक्त हो जाए, इसकी मूर्छा दूर हो जाए। हे तात, लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान राम का कुशल समाचार सुनाओ।
1: वनवास के प्रसंग में जब श्री राम जी लक्ष्मण जी तथा माता जानकी के साथ पंचवटी में विश्राम कर रहे थे तो षड्यंत्र रचकर लंकापति रावण ने

0: पिताजी का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वानर आदि जातियों की सेना सजाकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उसी युद्ध में मेघनाथ की शक्ति द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मैं उन्हीं के लिए हिमशिखर से औषधि लेने गया था। प्रातःकाल होने से पूर्व मेरा पहुंचना आवश्यक था।
1: हाँ दैव, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं प्रभु के एक काम भी नहीं आया। हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी और प्रातःकाल होते ही सारा कार्य बिगड़ जाएगा। मेरे वाण पर तुम पर्वत सहित चढ़ो, मैं तुम्हें कृपा निधान राम के पास भेज दूंगा।
0: नहीं प्रभु, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं शीघ्र ही जाऊंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें।

आधी रात बीत चुकी, अभी तक हनुमान नहीं आए। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव से ही कोमल रहा है। मेरे लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में शीत कृष्ण और तीक्ष्ण वायु सहन की। हाँ, वैसा प्रेम अब कहाँ है। मेरे विकल वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं उठते। जो जनते बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेउ नहीं हो। सुत भित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणि करिबर कर ही ना। असम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ देव जियावै मोही। हाय हाय, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मेरा कठोर हृदय तुम्हारे शोक को कैसे सहन कर पाएगा। नीच जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। सौ पैसी मोही तुम्हें ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहु ते जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। हाय।

0: कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तो नींद से जागो भाई, वहां अपनी सेना नष्ट हुई जा रही है और तुम्हें नींद पे आ रही है। उठो कुंभकर्ण।
1: भाई मुझे कैसे जगाया, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं?
0: कुंभकर्ण, मारीच की सहायता से मैं अयोध्या के वनवासी राजकुमार राम की पत्नी सीता को हरलाया था। उसी ने वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की है। हे भाई, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवांतक, मनुष्यों को खाने वाली अतिकाय, अकंपन और महोदराज सभी वीर युद्ध में मारे गए हैं।
1: मूर्ख, जगत जननी का हरण कर तू अपना कल्याण चाहता है, राक्षस राज ये तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे किस लिए जगाया है? भाई अब भी तू अपना अभिमान छोड़ दे, श्री राम का भजन करे तो तेरा कल्याण होगा। श्री हनुमान जैसे वीर जिसके सेवक हैं, क्या वे श्री रघुनाथ सामान्य मनुष्य है?
0: कुंभकर्ण, ये तुम क्या कह रहे हो?
1: भाई बहुत बुरा काम किया तूने, पहले ही आकर अपनी बात मुझे क्यों ना सुनाई? तूने तो उस देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं। अच्छा, तो अब तू अंतिम बार मुझसे भेंट कर ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं और तीनों तापों के दूर करने वाले श्याम शरीर और कमल नयन श्री राम के दर्शन करूं।
0: कुंभकर्ण, अब ये बेकार की बातें छोड़कर रक्षा का कोई उपाय करो।
1: अच्छा राक्षस राज, पहले मेरे लिए आहार लाओ। मदिरा के घट और भैंसों का समूह कहाँ है? आहार लेने के बाद मैं सेना लेकर राम से लड़ने जाऊंगा। ये सामने से कौन चला रहा है?
2: मैं आपका छोटा भाई विभीषण आपके चरणों में प्रणाम करता
1: हूं। प्रसन्न रहो, कहो कैसे हो?
2: तात, लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तहीं गलानी रघुपति पही आयु, देख दीन प्रभु के मन भायु।
1: सुन सुत, भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण, बंधु वंश ते कीन उजागर, भजे उ राम शोभा सुख सागर। तू मनसा वाचा कर्मणा प्रभु का भजन कर, रावण की बात पर मैं भी काल के वश हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। अच्छा अब तू जा और मैं भी चला।
3: सबको खा जाऊंगा।
4: अरे दुष्ट कुंभकर्ण, ठहर, मैं इस वार से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं।

0: अरे ये क्या, ये तो भाई कुंभकर्ण का सिर जान पड़ता है। हाँ भाई कुंभकर्ण, तुम भी रणक्षेत्र में मरण को प्राप्त हुए।
1: हे पिता, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी अपनी प्रशंसा क्या करूं, मैंने अपने इष्ट देव से जो शक्ति और रथ प्राप्त किया है वो अब तक मैंने आपको नहीं दिखलाया, कल देखिएगा।
2: प्रभात होते ही मेघनाद युद्ध भूमि में जा डटा। उसने विविध भयानक युद्ध किया। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से छा दिया। श्री राम की सेना के सभी वीर व्याकुल हो गए। लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि की देह को बाणों से छलनी बनाकर मेघनाद ने श्री राम जी पर आक्रमण किया। उसने बाणों के नागपाश में श्री राम जी को जकड़ लिया। श्री राम भी नट की भांति अनेक प्रकार से कौतुक करने लगे। जब जांबवान ने मेघनाद को ललकारा, मेघनाद ने एक पैना त्रिशूल चलाया। जांबवान ने उसे बीच में ही पकड़कर मेघनाद की छाती में मारा। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। उसने श्री राम के शरीर में लिपटे हुए सभी माया सर्पों को खा लिया। वानर के समूह भी माया से मुक्त होकर हर्षित हो गए। जब मेघनाद मूर्छा से जागा तो पिता को देखकर उसे बड़ी लज्जा आई। वो विजय यज्ञ करने की इच्छा से एक पहाड़ की कंदरा में चला गया। तभी विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से आकर कहा,
3: हे अतुल बल वाले प्रभु, मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर उसे प्रभु शीघ्र ही जीता नहीं जा सकेगा।
4: अंगद, सुग्रीव आदि बंधुओं, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और उसका ये यज्ञ विध्वंस करो। और लक्ष्मण, तुम्हें उसे युद्ध में मारना। देवताओं को भय से संत्रस्त देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। अपने बल और बुद्धि से इस भांति उस निशाचर को मारना जिससे वह क्षीण होकर मर जाए। हे जांबवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों लक्ष्मण के समीप सेना सहित रहना।
5: मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ज्यों ते ही आज बधे बिनु आवो तो रघुपति सेवक न कहावो। ज्यों सत्संग कर हिसाई तदपि हतो रघुबीर दुहाई।

0: इस पापी को मैंने बहुत खेल खिलाया, अब इसे मारूंगा। जय श्री राम।
1: लक्ष्मण कहाँ है? राम राम कहाँ है?
2: तेरी माता धन्य है मेघनाथ, धन्य है। तेरे मुख से मरते समय राम का नाम तो निकला।
3: जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ का वध सुना तो वो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी अपनी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे और सभी रावण को अपशब्द कहने लगे। रावण ने सब स्त्रियों को समझाया कि समस्त संसार नाशवान है, किंतु स्वयं रावण पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रात बीतने पर सवेरा हुआ और रींछ तथा वानर फिर चारों द्वारों पर इकट्ठे हो गए।
4: सुनो, तुम रीछ और वानरों के झुंडों को मत हल डालो, मैं दोनों राजकुमार भाइयों से लड़ूंगा।
5: मेरा रथ छोड़ ले चलो।
6: नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कहीं भी दे जीता वीर भलवाना।
7: सखा सुनो, जिस रथ से विजय होती है वो दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज चोरे। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतों रिपुताके। मित्र जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्गम शत्रु को भी जीत सकता है।
6: हे कृपाल, हे सुख निधान, इसी बहाने आपने मुझे महान उपदेश दिया। प्रभु मैं धन्य हुआ। प्रभु

0: दशकंदर संभल, अब तेरी मृत्यु समीप आ गई है।
1: जीते हु जे भट संजुग माही, सुनता पस मैं तिन समनाही। रावण नाम जगत जस जाना लोक।

0: जाके बंदी खाना। खर दूषण विराद तुम हमारा, बदिरु व्याद एव बाल बिचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हूँ, कुंभकर्ण घननाद है मारे हूँ, आज बैर सब ले निबाही।
1: जो रण भूप बाजी नहीं जाही, आज करहु खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले।

0: बड़ा विकराल युद्ध हुआ। श्री राम जी ने बार बार रावण के सिर और भुजाओं को काटा और वे बार बार उगाए। आकाश में सिर और बाहु जैसे छा गए, मानो असंख्य केतु और राहु हूं। हनुमान, विभीषण आदि सभी के साथ युद्ध करते हुए रावण ने अपार शक्ति और माया का प्रदर्शन किया। वानर सेना का विध्वंस देखकर जांबवान ने रावण की छाती में लात मारी। इससे रावण व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में उठाकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। इधर तो ये सब हो रहा था, उधर उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें ये सब कथा सुनाई।
1: हो यह कहा कह से किन माता के बिध मरे ही बिस्व दुख दाता। कैसे आश्चर्य की बात है कि रघुपति सर सिर कटे हूँ न मरई, पिथ विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जियावत ओही, चेहे हूँ हरिपद कमल बिछोही।
2: धीरज रखो राजकुमारी, मुझे पूरा भरोसा है कि हृदय में वाण लगते ही देवताओं का शत्रु मारा जाएगा। देखिए, प्रभु ताते उर हतई न तेही, एही के हृदय बसती बाई देही। सुंदरी, संदेह मत करो, सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो ही विकल, छुटी जा ही तब ध्यान, तब रावण ही हृदय मह मरे ही राम सुजान। चिंता मत करो, सब प्रकार तुम्हारा कल्याण ही होगा। अच्छा, देर हो रही है, मैं चलूं।
1: अरे तुष्ट चंद्रमा, तुझे शीतल कौन कहता है? तू तो बहुत ही दुखदाई है, और ये रात भी तो नहीं बीत जाती। हाय, शुग संभई सिरातिन राती। अरे इस समय ये मेरा बायां नेत्र और बाहु कैसे फड़क उठे? क्या क्या ये शुभ शकुन इस बात की सूचना है कि कृपालु श्रीराम जी से शीघ्र ही भेंट होगी? प्राणनाथ स्वामी।
0: आधी रात को रावण मूर्छा से जागा, उसने सारथी को धिक्कारा। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। फिर बड़ा भयानक युद्ध हुआ। श्री राम जी के बाणों से रावण के शरीर से रुधिर की धारा बह चली। स्रवत रुधिर धायु बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत सीस मही पारे। काटते ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने।

0: प्रभु बहुबार बाहु सिरहै कटत झटत पुनि नूतन भये पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा अति कौतुकी कौशलाधीसा काटे सिर भुज बार बहु मरतन भट लंकेश प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश।
1: शत्रु को जीवित देख देवता सिद्ध और मुनि व्याकुल हो रहे हैं प्रभु।
2: क्या तुम भी भयभीत हो विभीषण?
1: हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास है प्रभु, रावण उसी के बल पर जीवित है।
3: कहा राम, कहा राम रणहतो पुचारी।
4: श्री रामचंद्र महाराज की
0: श्री राम जी के बाणों ने रावण की भुजाएं और सिर मंदोदरी के सामने लाकर गिरा दिए। पति का शीश देखते ही मंदोदरी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। अन्य स्त्रियां रोती हुई दौड़ी, वे मंदोदरी को उठाकर रावण के शव के पास ले गईं।
5: धरणी तेजहीन पाव बकसी धरणी शेष कमठ सही सकही न भारा सोतनु भूमि परे परिचारा। स्वामी विदाता की समस्त सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोगों के स्वामी सदैव डरते हुए तुम्हें मस्तक नवाते थे, अब तुम्हारे सिर और भुजदंड गीदड़ों का भोजन बनेंगे। तुम श्री राम से विमुख रहे, ये तो होना ही था। काल के वशीभूत होने के कारण तुमने मेरा भी कहना नहीं माना और चराचर के स्वामी श्री राम को तुमने सामान्य मनुष्य समझा। हे स्वामी, तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने पर तत्पर रहा, इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ।
0: घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर अत्यंत दुख से विभीषण उनके पास गए। भाई रावण की दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए। प्रभु राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने विभीषण को धैर्य दिया। प्रभु राम की आज्ञा मानकर देश काल के अनुसार विभीषण ने रावण की सब क्रियाएं की और मंदोदरी आदि स्त्रियों ने रावण को तिलांजलि दी। वे सब मन ही मन प्रभु राम के गुणों का वर्णन करते हुए महलों में चली गईं। तदनंतर श्री राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी, वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जांबवान और हनुमान ने नगर में जाकर विभीषण को सादर सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक किया और रीत के अनुसार उनकी स्तुति की। विभीषण का राज तिलक होने के उपरांत सभी वानर विभीषण सहित प्रभु राम के पास आए और श्री राम ने प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी कि कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे, अपने साथियों के साथ देखा कि घंटी भी बंधी हुई है। समझ गए गोपी बड़ी चालाक है। तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं, चुप रहना, मेरे साथियों को माखन खाना है। मटकी फोड़ी गई, सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रहे।

हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाए तो हम सारे संसार को बताएं कि अब प्रसाद ले लो, भगवान ने भोग लगा लिया। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया, ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता हूँ, इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं। मैया मोरी।

इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया।

0: अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की। माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी।
1: अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया।

विशेष बात हो गई। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है। ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

एक बार आपकी जोरदार तालियां हमारे सब साथी कलाकारों के लिए। साइड दम पर मधुर एके, गिटार पर हिमांशु बिजुधर, संतूर पर पीयूष पवार, तबले पर यामा सरशार, और जिन्होंने डांस प्रस्तुत किया संगीता रॉय, आज के अनाउंसर स्मिता परिक, और हारमोनियम पर

अपने राम

everybody, bye-bye!

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।